0: 轮。
1: 各位都好吧，我们都很想念你们，有空请到这儿来玩。
2: धरती के बासियों की ओर से नमस्कार।
3: Здравствуйте, привет, вас.
4: 江南各色各班，大家上好。
5: Hola y saludos a todos.
6: Bonjour, tout le monde.
7: Hello from the children of planet Earth.